उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो लई।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yuya Granular. Mitiye jo
8: kya hai?
9: ईरान के परदेही वजीर अब्बास रखी चयो आए त अमेरिका सां बीहर गालियों शुरू करण लाइ अञा को भी फैसलो नाहे थियो। सालिस मुल्कन कतर ऐं पाकिस्तान तरफा पैगामनि जे मुंतकिली जो सिलसिलो जारी आहे, पर उन जो मतलब उहो न आहे त गालियूं शुरू थी वियूं आहिनि।
10: सदर आसिफ अली ज़रदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म सदर खे तारीख़ी दिफ़ाई मक़ा मुआहिदे खां आगाह कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी दिफ़ाई मुआहिदे लाइ नेक ख़्वाहिशुनि जो इज़हार कंदे वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जे कोशिशुनि खे सराहियो। फ़ौज ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि जे पेशवारनि सलाहियतुनि खे ख़िराज तहसीन। मुल्क मां दहशतगर्दीअ जे नासुर खे मुकमल ख़ात्मे जो अज़म। सदर आसिफ अली ज़रदारी मौजूदा इलाक़ाई सूरताल खे नज़र में रखंदे अवाम खे रिलीफ ॾियण जी ज़रूरत ते ज़ोर भरींदे चयो त आम वाइपे वारनि शयुनि जी बिना रंडक जी फरहमी ऐं मुनासिब अघ ते दस्तियाबी यकीनी बणाई वञे।

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Har Maah Munafa Aamdani Mein Izafa Bank Al Habib Rishta Bharose Ka.
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez Aaram, Muasir Hifazat, aur Kable Aitmad Mayar.
3: Har Achhe Store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yulia Granular.
8: Sakrat Amal. काज़िम गरीब आबादी जो चवण आहे त आबन ऐं हुरमुज खोलण या बंदि करण जो अख़्तियार सिर्फ़ ईरान वटि आहे।
9: अमरीका जे नायब सदर जे डी वेंस जो चवण आहे त ईरान जंग में तेल ऐं गैस जूं क़ीमतूं घटि रखण पहिरीं तरजीह आहे। ईरान खे एटमी हथियारनि खां रोकण ॿी तरजीह आहे। अमरीका बई मकसद हासिल करे रहियो आहे। ईरान जी सूरत आल फितरी
8: अमरीका सां ॿीहर ॻाल्हियूं शुरू कर

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Harniya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: 101.6. सुन जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सुन जो आवाज बुदंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए
4: زندگی گزاریو اعتماد سے قرآن کے سمجھ

0: जी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11 AM. This time check is brought to you by
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

यमन जे शहर अल मफाते ते हौसिन जो हमलो बिन सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणा मारिजी विया। यमनी हुकूमत जे फ़ौजी उहिदेदार चयो आहे त हौसिन बागेन बंदरगाह ते सामान लाहींदड़ बहरी ॿेड़नि ते 5 मिज़ाइल फायर कया। ॿिन जहाज़नि खे बाहि लॻी वई। हमले में ॿिन सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणा मारिजी विया। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि औरत समेत 2 ॼणनि जा लाश हथ छाछरो वेझो घर जे कमरे मां औरत कविता मेघवाड़ जो फाहो लॻल लाश मिलियो आहे। सखरबेरा जी सिटी पॉइंट बाईपास वटां खीरथर केनाल मां नामालूम शख़्स जो लाश हथायो आहे। सुञाणप न थी सघी आहे। इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं. मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे. त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि. ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे. असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे. ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी. 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे.
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस कर और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे. मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे. मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस. बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी. हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे. वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि.
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: शुभ लगा कर।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: दोस्तों ही मां शहर पढ़ियम शौकत डाणी जो जेको रौसपुर शहर जो वेठल आहे असांजो प्री प्यारो दोस्त आहे ख़ासि फरमाश इरफान अल्ला मिज़री भावल मिज़री मुदसर मिज़री ऐं साईं कलीम शाह ऐं रफ़ीक सुमरो ऐं मुंहिंजा नंढड़ा भाइर साबिर जमाली सलमान जमाली ऐं मुंहिंजे मामे ग़ुलाम सरवर जा फर्ज़ंद राशिद अली सादिक अली आबास अली ऐं मुंहिंजा भाणे जा नसीबुल्ला पांवर ऐं नसरुल्ला पांवर जी ख़ासि फरमाश तौफीक जमाली जी ख़ासि फरमाश ऐं यासिर जमाली
1: हो जड़े तेड़े हाल में जीअणो पवंदो
0: उस्तानगर
2: भलो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ज़ी चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहमतनामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि कई हुई, जंहिंजी अमेरिका भञकड़ी कई। अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरें वारा राब्ता हाणे मुयसर न रहिया आहिनि। तेहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो। यमन जे शहर अलमफाते होसियुनि जो हमिलो, ॿिनि सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणा मारिजी विया। यमनी हुकूमत जे फ़ौजी उहिदेदार चयो आहे त हुसी बाग़ियुनि बंदरगाह ते सामान लाहींदड़ बहरी ॿेड़नि ते 5 मिज़ाइल फायर कया। ॿिनि जहाज़नि खे बाहि लॻी वई। हमले में ॿिनि सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणा मारिजी विया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻोणनि फ़ौजियुनि जे महान नियाजियाणो मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साराह। ISPR मौजूदु फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻोणे फ़ौजियुनि जे सरबराहनि समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक थिया। फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई। अॻोणे फ़ौजियुनि पारां बि अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार। क़ौमी इतिहाद, अमुन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाउ।

0: नसीराबाद के मुख्तलिफ शाखन में ज़रई पानी की खोट, बिजली की लोड शेडिंग ए बदमनी खिलाफ JUI जो एहतजाज। काठिया मोहला खां रैली कढ़ी अर्थर शाख के पुल वट धरणो हयो वयो। अगवाणन चयो तो ज़रई पानी की खोट सबब आबादगार परेशान आहिन। शहरन खां फुरूं बेरोज जो मामूल बणियल आहिन। आबादगारन के पानी वेही अमुन बहाल करायो वञे। बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद में आबादगारन जो पानी खोट खिलाफ एहतजाज। आपाशी ऑफिस आलू धरणो हिन रो माइनर के आबादगारन पानी खोट खिलाफ एहतजाज करे धरणो हो। आबादगारन है तो शाखन में पानी खोट सब फसल सुकी रहा है। पानी फराम करे जराए त जिंदगी बचाई वजन। सिंध के मुख्तलिफ शहर औरत समेत टिन जणन जा लाश हथ कया। छाछरो वेझो घर के कमरे में औरत कविता मेघवाड़ जो फाओ लगल लाश मिलियो। सखर जे सिटी प्वाइंट बायपास वटा कीर्तन केनाल मां नामालूम शख्स जो लाश हथायो आहे, जंहिंजी सुञाणप नथी सघी आहे। सखर बैराज मां बि हिकु ॼणे जो लाश मिलियो आहे, सुञाणप नथी सघी। पीर जो गोठ भरसां गोठाणनि जो पुलिस जे ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज। गोठ राहूजा जा रहवासियुनि पारां कूड़ा केस दाख़िल करण ऐं घरनि ते पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। गोठाणनि मौजूद पुलिस शागिर्दनि खे बि कूड़नि केसनि में नामज़द कयो आहे। गोठ ते चढ़ाई करे फुरलुट बि कई आहे। इंसाफ़ कयो वञे। इंडोनेशिया जे साहिली इलाइक़े में ज़िलज़िलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड। ज़िलज़िले सबब केतिरियूं ई इमारतूं पट, 20 ॼणा फौत, केतिरा ई ज़ख़्मी। इंडोनेशियाई साहिल वेझो आयल ज़िलज़िले सबब रहवासियुनि घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। किरियल इमारतनि जे मलबे में दबियल माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
3: अक्सर मान जो सवाल हों असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असो असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तमा के वैक्सीन जे लाए उम्र की हद कोने कैं जगह वैक्सीन कैं उम्र के पोलियो लगी सके तो कैं उम्र के वैक्सीन करे सके तो रेशो वधी का 10 साल के घट आ तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए तो सभी के बूस्टर डोज लगराए.
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
4: GAFM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

थकावट होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है, या जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 1 PM. This time check is brought to you by
0: Fakiri Dex Ointment.
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो।
6: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what we have the blockade. No ships get through unless we want them to.
7: ट्रंप जो आपने हरमुज के जल्द अमेरिकी लाइको करार देने जो ऐलान न्यूयॉर्क में तकरीब के खिताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो है ते ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करने ते मजबूर कंदासीं। जल्द आपने हरमुज के अमेरिकी इलाइको करार देने जो भी ऐलान कंदस व्हाइट हाउस आपने हरमुज बाबत सदर ट्रंप के बयान के मजाक करार दई छो। अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहिमत नामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिं जे अमेरिका भञकड़ी कई। अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरें वारा राब्ता हाणे मुयसरु न रहिया आहिनि। तेहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो। यमन जे शहर अलमका ते हुसिन जो हमलो, ॿिन सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणा मारिजी विया। यमनी हुकूमत जी फ़ौजी उहिदेदार चयो आहे त हुसी बागेन बंदरगाह ते सामान लाहींदड़ बहरी ॿेड़नि ते 5 मिज़ाइल फायर कया। ॿिन जहाज़नि खे बाहि लॻी वई। हमले में ॿिन सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणा मारिजी विया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻोणनि फ़ौजियुनि जे मान व्याजी आणे मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साराह। SPR मौजूद फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻूणनि फ़ौजी सरबराहनि समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक कया। फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई। अॻूणनि फ़ौजियुनि पारां अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार। क़ौमी इतिहाद अमुन ऐं खु़शहालीअ लाइ किरदार जारी रखण।
8: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी।
7: इनाम हैदर मलिक जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाक़ात। NDMA चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म खे मौसमियाती तब्दीली जे हवाले सां ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म पारां NDMA खे सूबनि सां सहकार करण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त मुतासिरनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि।

कराची जी अदालत में नौजवान व्यापारी मीर रजा के सी बुधड़ी संदस भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी जमानत में वाद जांच में सहकार करण जी हिदायत वकील जबरान नासिर चयो आहे त पुलिस इन वक्त ताई मोहम्मद अहमद के जवाबदार नामजद नाहे कयो जवाबदार नामजद करण खां सवाइ गिरफ्तारी मुमकिन नाहे वाके वारी हंध तां कुझ वधीक शाहिदूं मिलियूं आहिनि मीर रजा जे कतल खिलाफ़ वालिद न पर नौजवान एहतजाज करे रहिया आहिनि मीर रजा था।

नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखन में ज़रई पाणी जी खोट, बिजली जी लोड शेडिंग ऐं बदमनी ख़िलाफ़ जेयूआई जो एहतजाज काठिया मोहला खां रैली कढी अर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो त ज़रई पाणीअ जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि, शहरनि खां फुरू बि रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे। बलूचिस्तान जे शहर आबाद में पाणी खोट सबब सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत जा लाश हथ छाछरो वेझो घर जे कमरे मां औरत प्वाइंट बाईपास वटां खीर जो लाश हथ आयो मिलियो। सिंगर जो लाश जे वारसन प्रेस क्लब आॾो लाश रखी एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन मौजूदु पुलिस हादसे जे ज़िमेवारनि खे अञा ताईं गिरफ़्तार नाहे कयो। ज़िमेवार गिरफ़्तार न थिया त एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। खीर जो ॻोठ भरिसां ॻोठाणनि जो पुलिस जे ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ राहूजा जा रहवासियुनि पारां कूड़ा केस दाख़िल करण ऐं घरनि ते पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। ॻोठाणनि मुजिबि पुलिस शागिर्दनि खे बि कूड़नि केसनि में नामज़द कयो आहे। ॻोठ ते चढ़ाई करे फुर लुट बि कई आहे, इंसाफ़ कयो वञे। इंडोनेशिया जे साहिली इलाइक़े में ज़िलज़िलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड। ज़िलज़िले सबब केतिरियूं ई इमारतूं पट वी केतिरा ई ज़ई साहिल वेझो आन खां किरी आया। किरियल इमारतनि जे मलबे में दबियल माण्हुनि खे

0: फायर कर डाला रेस्क्यू ऑप।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। त इंदो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वरी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताईं जेतिरा भी बार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
4: सोना सिहत कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, हैदराबाद 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: हर दिन हर पहर की लहर, TH नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ओके जी, सो प्रोग्राम तो भाई सुना जा रहा है, बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। तमाम तो लोगों को वेलकम करने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब आप हमें ज्वाइन कीजिए जनाब 888 और फेसबुक पर। ऐसे के साथ साथ यहाँ पे टाइम हो जाता है, जी जाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहेंगे और हमारा साथ देंगे पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8 पर। आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती।

0: पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे, वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो
1: डॉक्टर फरहत राम त अली मुल्क सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अक्सर वालदेन
3: हाँ जी हाँ जी कुछ भी हो, कोई भी बात चल रही हो, इतनी ही सीरियस बात क्यों ना चल रही, लेकिन मेरा हाँ जी खत्म नहीं हो रहा होता। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों का भी एक कोई वर्ड होगा जो कि बहुत ज्यादा बोलना आप लोगों की आदत होगी, तो वो आज आप मुझे बताने वाले हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे प्रोग्राम में रौनकें होती हैं। और उसके अलावा अगर आप अच्छा अच्छा गाना सुनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे म्यूजिक कलेक्शन आपको पसंद है, तो आप हमें फरमाइश भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और यहाँ पर जो है ना आप हमें ज्वाइन करते जाएंगे। आपके मैसेजेस तो बिल्कुल मुझे मिलते जा रहे हैं जो कि हम शामली प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन मैं क्या सोच रही थी, ये बात है बिल्कुल, अगर ऐसा वाला सीन हो जाता है ना, यानी कि एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई हमें ना अगर स्पॉन्सर्ड नहीं होता तो मैं इतनी इतनी बातें करती, ये भी बोलती वो भी बोलती, ये भी बात थी हाँ बतानी आप लोगों को, लेकिन जब स्पॉन्सर्ड नहीं होता तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैंने क्या बातें करनी है। ये चीज जो है ना ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर देती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। चले कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे आप लोगों के साथ बातें करेंगे। और पैनल पर यहाँ पर आपके मैसेजेस हैं जो कि आते जा रहे हैं, तो जी आते जाइए और आपको वेलकम कहते हैं। यहाँ पर सादिया अली हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुकी हैं। सादिया अली क्या कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून, आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं। अब्दुल रशीद लाखेर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है। हिदायतुल अहमदानी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। मीर बालाच बिरोही हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और सादिया कहती है यहाँ पे ये पोइट्री है, कुछ लोग जिंदगी से चले तो जाते हैं मगर दिल से कभी नहीं जाते, उनकी आवाज उनका अक्स हमेशा दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा से जो हाउ आर यू, हो फाइन बेटा, यस आई एम फाइन, आप बताएं कैसे हैं। और उनका अलावा निदरी भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद कहती है तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हम है हम, वालेकुम अस्सलाम। समझने में थोड़ा टाइम लग गया, वेलकम कहती हैं आपको भी हमारी प्यारी निदड़ी। और सादिया कहती हैं टॉपिक मेरी आदत है वर्ड आप ही बोलते हैं, लड़कों के साथ बैठे भाइयों के साथ बैठे तभी आप ही बोलेंगे। उनका अलावा हजार खान जतो ही हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। उनका अलावा जी निदड़ी कहती है टॉपिक मैं तो तौबा ज्यादा बोलती हूँ, बात बात पर तौबा तौबा करती हूँ। क्या बात है, ये वैसे अच्छी बात है, तौबा तौबा किया तेरा तौबा तौबा। अच्छा उनका अलावा कहती पूरा वर्ड हाय अल्लाह तौबा, चले ये ठीक है ये ठीक है। उनका अलावा हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, अब तो मैं दोबारा ब्लैक हो जाऊंगा, चलते का नाम मस्ती। नहीं नहीं आप टेंशन ना ले, आपके गोरेपन का बंदोबस्त कर देंगे हम। और हमदुल्ला मलाखेल कहते हैं अपना हर काम ईमानदारी और नफासत से करें, क्योंकि आपका काम सिर्फ आपका मुस्तकबिल ही नहीं बल्कि आपकी शख्सियत भी बनाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा।

और ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाएंगे और अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस हैं, यानी कि आप लोगों के साथ बातें की जाएगी। उनके अलावा पोस्ट के तमाम ज्यादा का ज्यादा लाइक और शेयर करना हलो मुख्य बुधायो पे आज तुम कोई अड़ो वर्ड जो तुम बार बार गालाइंदा हो जो तुम्हें दाढ़ी आदत हो जो लफ्ज गालाइण की वो कड़ो लफ्ज है तुम बुधायो पाया। और हमारे साथ ही हमदुल्ला भाई कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। हमदुल्ला मला खेल हमें सुन रहे हैं फ्रॉम कोयटा, वेलकम टू शो। आपको भी वेलकम कहा जाता है प्यारे भाई। स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजिर है स्मार्ट भा खिचूं था भली करे आया। उनका अलावा बिल्कुल तमाम जो गालियों आहन। अच्छा किशोर भाई कहते हैं हाँ असा लाए ही दर कदें बंद कंदो बुधाए छो तो तैयार थी वनो अला या खबर को देसूं था थोड़ो थोड़ो अगत हली हाली तो खुले ला तो फायदो हासिल कर। उनका अलावा ही गानों हलाया हुआ गानों एंजॉय करना सी सो हाँ जी फरीहा परवेज की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना है। इस गाने को एंजॉय कर लेते हैं जरा। और भी मजे मजे के गाने हमारी लिस्ट में हैं तो म्यूजिक लिस्ट एंजॉय करेंगे और आप हमें ज्वाइन करते जा रही हैं। बताइए जरा कौन कौन कहाँ कहाँ से

हाँ जी, ये तो बात बिल्कुल ऐसी हो ही जाती है कि कई मरतबा हम किसी की बात पर यकीन नहीं करते और यकीन वैसे करना भी नहीं चाहिए, ना तो इंसान फरिश्ते हैं ना ही आजकल दौर ऐसा है कि भाई जान हर किसी पर यकीन किया जाए।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने एंजॉय किया. और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है जनाब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करते जा रहे हैं 888 ऑन फेसबुक पर, आपका हमारा साथ मौजूद रहेगा. और इसी के साथ साथ पूरे पूरे 3 बजे तक मैं आपके साथ हूँ जनाब. और यहाँ पर हजार खान जतोई भाई कहते हैं आप भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, अगर हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी. अल्लाह जय हुदा. हिदायत आपने गाने की फरमाइश कर दी है, ॾिसूं था बाबा ॾिसूं था. और निदड़ी त मां गाने जी फरमाइश कई आहे, मां हलाइण जी कोशिश कयां. दर्दे दिल आ चुकी है, दर्दे दिल कहती है अस्सलाम वालेकुम चंदा जानी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं. चाचा कहते हैं आप हमसे बातें करें ना, बातें करें नहीं तो आई हूँ, मेरा जरा मूड नहीं बस फिर सोचा चलें जी कर ही लेते हैं. अच्छा ने कहा हिदायत कहती टॉपिक आंसर सिद्रा गाना सुना दें, ये लफ्ज कुछ ज्यादा बोलता हूँ मैं, नहीं प्रोग्राम में नहीं, प्रोग्राम के अलावा भी लोगों के साथ बात करते हैं तो कौन सा लफ्ज है जो कि आप ज्यादा बहुत ज्यादा बोलते हैं.

क्रिएटिविटी जरा याद आ गई. आजकल आप लोगों ने नोटिस करा है AI के गाने कितनी अच्छे अच्छे बनना स्टार्ट हो चुके हैं. यानी कि ये जो बात पहले की जाती थी ना कि AI इंसानों की नौकरियां खा जाएगा, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि AI ने तो सिंगर्स की नौकरी बिल्कुल खा ली है. आजकल तो एड्स भी सारे AI से बन रहे हैं. तो देखें भाई, वो इसलिए कहते ना AI सीख ले, आगे बहुत आपको काम आएगा. कि गानों से जरा बात याद आ गई कि AI के गाने जो आजकल इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, तो एक ऐसा AI का गाना आपने मुझे जरा बताना है जो कि आजकल आप सुन रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको यकीन नहीं आता कि ये AI का बना हुआ गाना है. क्योंकि बहुत गाने ऐसे आ चुके हैं मार्केट में जो मैं सुनकर भाई मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि ये AI का गाना बना हुआ है, इतना अच्छा इतना सुरीला कि सुनकर बस मजा ही आ जाता है. तो जल्दी से मुझे बताएं कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है कि ये तो भाई AI का नहीं, लेकिन हाँ वो AI का होता है. तो भाई ये आजकल सिंगर्स की नौकरियां भी जरा खतरे में आगे पता नहीं और क्या क्या होने वाला है. इसीलिए भाई पढ़ी लिखी IAS YAS बने, अपना फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर कर ले. और इनके अलावा अब्दुल्ला अली हमारे साथ कहते हैं अखरी चौधकी से अली गुलाब शर और अब्दुल्ला शर, पाजी आपका प्रोग्राम अच्छा है. थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, आपको वेलकम कहते हैं. आपका ये जो सिटी है ना ये मुझे सही से नहीं इसका नाम आ रहा, मैंने सुना ही पहली मरतबा. तो आपको वेलकम कहते हैं. उनका अलावा दर्दे दिल कहती हैं हाँ अमेजिंग सॉन्ग एंजॉय करें. और दर्दे दिल कहती हैं कि और अलीजा शो सुन रही है, टॉपिक अलीजा ज्यादा हाँ सही सही बोलती है, हाँ सही सही ओके. हजार भाई कहते हैं जी हाँ जी, टॉपिक मैं ज्यादा बोलता हूँ और कभी कभी ओ माय गॉड भी बोलता हूँ. ओ माय गॉड ये जो भी लोग बोलते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है, पता नहीं क्यों.

और हजार रुपए कहते हैं रियली एआई मेरा काम भी खा जाएगा, लग तो ऐसा रहा है। आजकल देखें लोग ज्यादा कंटेंट जो है ना वो ऐसा बना रहे हैं कि मुझे ऐसा होता ना, पहले मैं सोचती थी कि लोग इतनी मेहनत करे वीडियो बनाने में, एक वीडियो बनाने में इतना मुश्किल काम होता था, लोग रिकॉर्डिंग करते थे, अपनी वीडियो बनाते थे, ऑडियो देते थे और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर एडिट करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि भाई एआई को दे दें वो सारा काम आपको करके दे देगा। और अब तो ऐसा है कि शॉर्ट्स भी आपने देखे होंगे बस सिर्फ एआई के ही चल रहे हैं, मैं बैगन उड़े, मैं गोभी उड़े, सारा बस यही चल रहा है, फीड मेरा पूरा बड़ा हुआ होता है। तो ये सुन सुन कर देख देख कर ऐसा लग रहा है कि भाई एआई ने इतना जो है ना वो हमारे लोगों के जहनों पर सवार हो चुका है कि बस उठते बैठते हमारे घर में तो यही चलता है, मैं एआई उड़े, मैं गोभी उड़े, मैं बैंगन उड़े और ये पता नहीं कौन कौन सब्जियों के ये शॉर्ट्स बनाकर जो है ना ये बस चल रहे हैं आजकल। तो ये चीज देखकर अजीब ही लगता है और हम सोचते हैं भाई ये दुनिया कहाँ जा रही है। तो अपना टाइम जो है ना वो ऐसी चीजों में जरा मत ही वेस्ट किया करें, बस आप ऐसी रील्स देखते हैं बैठकर। मैंने तो ऐसे सारे कंटेंट को जो है ना वो हाइड ही कर दिया है, मेरे पास इस तरह की कोई रील नहीं आती, लेकिन मेरे घर वाले जो है ना वो सारा दिन देखते रहते हैं। और ये वही बात आ जाती है, जो लोग जितना कंटेंट देखेंगे तो उनको वैसा ही जो है ना वो ज्यादा कंटेंट बनाएंगे लोग, यानी कि उनको व्यूज मिलते हैं तो वो ज्यादा बनाएंगे। अगर इस तरह का कंटेंट ज्यादा लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा बनेगा। तो ऐसा है कि आप देखना जरा बंद करें ताकि लोगों को ये चीज समझ आ जाए कि भाई कौन सा कंटेंट बनाना है और कौन सा नहीं बनाना। भाई हाँ क्या पता एआई आरजीबी बन जाए अब तो कुछ भी हो सकता है, मैं कहती हूँ कुछ भी हो सकता है।

ये बात बिल्कुल मुझे लगती है कि सिंगर्स का तो भाई गयो, सिंगर्स तो गयो, क्योंकि इतने अच्छे से ये आएंगे गाने बन रहे ना, मैं सुनकर एक दो गाने में आपको सुनाऊंगी प्रोग्राम में, आप सुनिएगा आपको मजे आएंगे। आप बोलेंगे भाई ये AI जो गानो कांगन लगो एक होना, पर हाँ बिल्कुल AI जो गानो हो। अच्छा किशोर भाई कहते आओ मीम लवर आई हाँ, जेको मीम पसंद अच्छे थो हूँ अप्लाई कर दो आया। सेम सेम अब्दुल्ला भाई कहते हैं बाजी मुझे एक अर्ज नहीं नहीं इंडियन गाने भाई अब नहीं लगाते तो माजरत कर देते हैं। सादिया कहती है आप ही पांच उंगलियां बराबर नहीं है, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। भाई मैं किसी के ऊपर यकीन नहीं करती। और मुझे पता है पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हाथ पूरा आप बंद कर देना तो पांच उंगलियां बराबर हो जाएंगी। तो मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करती हूँ, पांच उंगलियां जो है ना वो एक हो जाती है जब

0: भाई मैं होशियार हूँ, मैंने बंदोबस्त कर लिया हुआ है अपना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप अपना सोचिए जरा। वैसे वो वाली बात आ जाती है ना कि मैं लेडीज हूँ, मुझे फ्यूचर की ज्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए। समझ गए होंगे, तो लेडीज लोग को ज्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हैं। प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ऐसी हमारी बातें होंगी जी प्रोग्राम के अंदर, और आप लोगों के साथ बस बातें करेंगे। इधर उधर की बातें तो चलती रहेगी, टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। यहाँ पर टाइम हो जाता है जी, हम जाएंगे न्यूज ब्रेक के जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापस जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। आप बस यही बैठे रहिएगा, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। चलती का नाम मस्ती, आपका हमारे साथ पूरे पूरे 3 बजे तक।
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز،
1: GA FM 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
3: اب آپ سنیں گے GA FM نیٹورک پر KTN نیوز،
4: Brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर, वित्तीय जो मान वधाए।
3: अब आप सुनेंगे

0: चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। एनडीएमए चेयरमैन पारां वजीर आजम के मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ब्रीफिंग दिनी वही। वजीर आजम पारां एनडीएमए के सूबन से सहकार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ चो तो मुतासिरन के सहूलतू फराम कयूं वन। कराची की अदालत में नौजवान व्यापारी मीर रजा केस की बुधनी। अदालत पारा जांच में सुस्ती ते गणती जाहिर। 24 अगस्त तई जांच मुकम्मल कर रिपोर्ट पेश करण की हिदायत। अदालत रिमार्क्स डींदे चयो तो वालिद खानदान ए शहरी परेशान आन। एक मानू जो कत्ल थियो आहे। जांच कर हकीकतू सामू आणियो। अदालत मीर रजा के भाईवार मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 10 डीह की वाद कर छी। पुलिस से जांच में सहकार करण की हिदायत। वकील जबरान नासिर चयो तो मीर रजा के कातिलन की गिरफ्तारी चाहियूं था। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुलगीर हड़ताल 8 डी भी जारी। कराची पोर्ट कंटेनर से भरजी वही। मुल्क में सामान की फरहमी मुतासर थियण लगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मौजूद रोजानो लगभग 10,000 कंटेनर बंदरगाह मां निकरंदा आहिन, पर हड़ताल सबब रूकजी विया आहिन। हड़ताल सबब मुल्की मैशियत के 50 अरब का वधीक जो नुकसान थियो आहे। शादी के बहाने पाकिस्तान घुराए कैद करने की शिकायत। इंडोनेशियन नारी हैदराबाद में बाजियाब। इंडोनेशिया की नारी की शिकायत। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कार्रवाई। विभिन्न मैसेज के बाजियाब करायो। कोर्ट के हुक्म से पुलिस कार्रवाई करे नारी के बाजियाब कराए। दखण में सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ सिंधी अदबी संगत की रैली। अदीबन शायरन सियासी समाजी धुरन ए सिविल सोसायटी पारा रैली कढ़ी धरणो आयो वो। अगवाणन तो सिंध जो विरहांगो कें भी सूरत में कबूल न है। जिदोजहद जारी रही। हुकुमरान सिंध के विरहण वाली साजिशू बंद कन।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन छो थी डिनी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके पर रेशो 10 साल का घट आ तंहिं करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाराए।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल खुदा गवाह बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छकाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाब करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: सिंध के माथे का झूमर,
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: कलाम आहे खां पोइ तव्हांजो मैसेज मिसिंग पार्ट आहे और उन खां अलावा मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ कहते हैं जबरदस्त ये शो और सॉन्ग सुनाए हुमेरा चन्ना का। हुमेरा चन्ना का गाना आपको सुनाने की फुल कोशिश की जाएगी। और रसूलाबाद से आबिद हुसैन शंबानी भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अदी मुंजो तकिया कलाम नाहे, बाकी अक्सर चवंदो आहियां जेको आ सो उहो पंहिंजो आहे, जेको आ सो उहो पंहिंजो आहे। पहिरां कुझु टाइम पहिरां मूंखे आदत पई मार घड़ी खे चवंदा जेको आहे सो तेको आहे, जेको आहे जेको आहे सो तेको आहे, तेको आहे जेको आहे। इहो मां शायदि कंहिंखां ॿुधो हुयो, हुनजी आदत हूंदी जेको आहे सो जेको आहे सो, पोइ मार हुन जो मज़ाक उॾाइण लाइ हुनखे चवंदा जेको आहे सो तेको आहे, तेको आहे जेको आहे। इहो चई चई सही आदत पइजी वई मुंहिंजी बि, ईअं थींदो आहे तॾहिं चवंदा आहिनि कंहिंजो मज़ाक न उड़ाइजे। और रसूलाबाद खां आबिद हुसैन शंबानी भाई तव्हांजो मोहबतूं आहिनि ऐं उन खां अलावा शमन जे गाने जी फरमाइश हुई त बाबा शमन जो गानो असां लिस्ट में रखी छॾियो आहे, बिल्कुलु असां ॿुधंदासीं। ये जी हमारे साथ दादू खां अहमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफ़ायतला जतोई, फारूक हैदर जतोई, सॉन्ग हुमेरा चन्ना हाज़िर हाज़िर ॿुधरा आहियूं था। वरियाम अली कहते हैं सिदरा हम भी सुन रहे हैं आपका प्यारा शो एंड सलाम हो दिल से आपको एंड सॉन्ग भी बहुत अच्छे चलाती हैं आप अपनी पसंद के लगाया करें। ठीक है।

वैसे आहे दुख जो गानो पर फीलिंग दादो भलो तो हो इन अड़े गाने ते केर दुख कंदो बाबा। अच्छा हैप्पी फायजा हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, सिडो जानी हम कैसी, आपका शो माशाल्लाह सुपर डुपर और आप उससे भी ऊपर, हम भी आपके साथ साथ ही जाना, थैंक यू वेरी मच हैप्पी फायजा। और साइमा मीर हमारे साथ ही कहती, पल पल हिफाजत करना यारब उन फूलों जैसे लोगों की जिन्हें हम बड़े खुलूस से रोज याद करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद प्यारी। टुकड़ा टुकड़ा।

वालेकुम अस्सलाम माय स्वीट आशिका, कैसी है? मैं हैप्पी गर्ल हूँ, तबीयत कैसी है? वेलकम टू शो स्वीटी, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं? और मकसूद कहते हैं जवाब में जब किसी से बात करता हूँ तो बोलता हूँ ओ हेलो भाऊ, और जब किसी से किसी की बात सुनता हूँ तो बोलता हूँ कसम थई नानी जो सही बुधा सैया बाबा।

देखा है किशोर भाई कहते लगे तो मुझे भी AI वर्जन अच्छी वो आ कल खां फेल कया पयो छा मतलब कहना क्या चाहते हो असनौला फुल पोटर हमारे साथ मौजूद है हाय जी हाय दर्द दिल में बिल्कुल अलर्ट हूं जी ता होशियारी पकड़ियो ये गल न थ मता समझो

हिन गाने खे रात जो ॿुधण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे, सभु सूर यादि अची वेंदा आहिनि। बिल्कुलु बहुत ख़ूबसूरत गाना। अच्छा, ये हमारे साथ है एमी आ गया मैं आपके शो में। सलाम एंड गुड आफ्टरनून, कैफा हालो के या हबीबी। मोबाइल चार्ज नहीं था फिर भी आपके शो में आने के लिए किसी और का मोबाइल उठा के आ गया। एम हमारे साथ है। अली मुर्तजा को वेलकम कहा जाता है। थैंक यू।

0: ॿारनि जी क़ुवत मुदाक़त जे वधाइण में मदद करे थी। ॾह साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6।

थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई हाँ लग रहा है कि यहाँ पर ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से लग रहा है कि ये गाना जो है ना AI सॉन्ग है, वरना तो कोई यकीन नहीं कर सकता कि क्या ये गाना AI है। बिल्कुल सुन ले भाई, देख ले कितनी AI ने तरक्की कर ली है। तव्हांजो कुझु मैसेज आहिनि, मैसेज पढ़ी वठूंदा, हुन खां पोइ तसली सां वेही तव्हांखे भला भला AI सां गाना बि ॿुधायूं था। अच्छा सो हीअ असां सां गॾु मौजूदु आहे, अस्सलाम वालेकुम, फुलजी स्टेशन लग नूरपुर खां फौजी पठान खान खोसो, असांखे गानो ॿुधायो फोटो जरदारी बोल आहिनि। ठीकु आहे भाउ, तव्हांजो मोहबत आहिनि, प्रोग्राम ॿुधो पिया। इरम कहती है मैं मीम लवर हूँ, चले जी ठीक है, अच्छी बात है। ये मौजूद है हक मौजूद मुलाड इस्लाम मदद बदीन खान, डॉक्टर हसीना सुमरो कहती प्यारी असां के गानो बुधायो फरजाना परवीन बोल आहिन, मुझे हथ जो रुमाल बे कंखे न दे जाए, हाजिर हाजिर इन प्रोग्राम में न तो पंजी बजे वाले प्रोग्राम में ताजी पसंद जो गानो हलाईंदासीं। और सैमा मीर कहती अरे वरी बिल्कुल यही गाला। ओके जी ओके, कोई बात नहीं, वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ है काफी दिनों के बाद, वैसे आप हमारे प्रोग्राम में शामिल रही हैं। सायमा मीर कहती है हाय फौजिया बतूल दा गाना अमेजिंग, मस्त मस्त, और सबा एंड सिद्रा टॉपिक सही सही, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया। चाचा खालिद कहते लगे थो अॼु मुंहिंजो गानो कोन प्ले थियो, अॼु तव्हां मतिलब किस्मत सां गाने जी फरमाइश कई, उहो गानो वरी AI जो हुयो, सो उहो बि मूं लिस्ट में लॻाए छॾियो। और ये हमारे साथ ही आरजे मेरे पास

अच्छा नाम तो आपने लिखा नहीं अपना, पता नहीं कौन है, नाम लिखा करे पैनल पर जब भी आप मुझे मैसेज किया करे। जो एडम कहती है आप ही जवाब है, अल्लाह तौबा तौबा। चले जी सही बात है। मीर बालाज ब्रोई हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम करते। ये जो गाना अभी लगा है ना, ये गाना मेरा आजकल बहुत फेवरेट बन चुका है। ये गाना जरा सुनिएगा, ये AI का सॉन्ग है, आपको यकीन ही नहीं आएगा।

0: आजकल इस गाने के सुरूर में मैं खो चुकी हूँ बहुत ज्यादा, और कितना खूबसूरत गाना था सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। उनके अलावा बिल्कुल जी तमाम से गुड मौजूद आयो, ये मौजूद हैं डॉक्टर हसीना सुमरो। डॉक्टर हसीना सुमरो को वेलकम कहा जाता है आप हमारे साथ, और संजय जयपाल भाई हमारे साथ
1: खामोश,
0: और अली मुर्तजा कहते हैं
1: तेरा नाम लेती हूँ
0: प्ले राहत सॉन्ग इन वॉइस ऑफ सिद्धू क्या मतलब कुछ भी। और सईदा बुखारी हमारे साथ हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आपने बहुत अच्छी सी दुआएं दे दी हैं मुझे, सो थैंक यू सो मच सब दुआओं के लिए। और मोहम्मद जमान कहते हैं नेटवर्क का कोई हल बताएं, सुकून से शो नहीं सुनने देते, जो ए बताई थी ना वो डाउनलोड कर ले। दर्द दिल कहती है और अगर कोई सीरियस बात हो तो बोलती हूँ न कर सही है। सईदा बुखारी कहती है ये बेहतर है कि इंसान ना खुश हो मगर हकीकत के बदतरीन सूरत से वाकिफ हो, यह हकीकत है। मिदली कहती है रात को सर्दी दिन को गर्मी, ये सब क्या है पूजा? बस मत पूछे पूजा से, पूजा खुद सताए हुए और संजय जयपाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, शमन का गाना हमने ऑलरेडी सुन लिया है।

हिदायतुल्लाह कहते हैं आज हमारे गाने भी AI खा गए. बिल्कुल ऐसा है. चाहता है सभी अगर लौट आए तू एक बार में. भाई तभी कह रहे हो सिंगर्स तो गयो, सिंगर्स तो गयो ठाकुर. अच्छा हुआ मैं सिंगर नहीं बनी. कोई शिकवा होगा न कोई गिला, बस तेरा साथ हो. हाँ दर्दे दिल कह दिए क्या ये तो कमाल हो गया, इतने अच्छे गाने मैं बोल रही हूँ ना आजकल, मैं सुनी ऐसे गा रही हूँ.

बस बैठे बैठे हमें पूजा याद आ गई। पूजा को भी याद करने का ऐसे दिल कर रहा था। और अच्छा अब्दुल गफार भाई, वालेकुम अस्सलाम, आप भी सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ। हजार भाई कहते कि ये सच है कि जागती आंखों में तेरे ख्वाब आते हैं, प्यार मोहब्बत और इश्क कब किसी को रास आते हैं। वाह वाह।

हमारे साथ हैं सज्जन भाई माशी गोठ जान मोहम्मद माशी मोरो का तमाम से ज्वाइन कयो है सो मोहब्बत वाइन भावन जो और ये मां चोती अस्सलाम वालेकुम ताहिरा लाड़काना खां आपी छाला तमाम जो ताहिरा मसफा भलियां ता उता की आयो और बदीन खां डॉक्टर हसीना सुमरो साहिबा नंदड़ी छोकरी मासूम छोकरी मैसेज पूरो पढ़ो हाजिर डॉक्टर साहिबा तमाम जो मैसेज पूरो पढ़नासी आई तमाम जो गानो रही जिया तो वो असा 5 बजे वाले प्रोग्राम में हलाए वठनासी ठीक है सो थैंक यू सो मच ना सबनी सोनन प्यारन मिठड़न मानन जो ये मोहब्बतूं आइन बाबा जगह पंध कराइन थियूं

दोस्तों चले इसी के साथ आप लोगों से लेते इजाजत वरी इस तरह से मुलाकात मुझे थे पे बाबा पंजे बजे वाले प्रोग्राम में तो पंजे बजे वाले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करना इतने तवा खा इजाजत रखो इतनी क्यों करती थी उजे तो माजरत जिना फीडबैक रहती हुआ जो को गानड़ो शानड़ो रहती हुआ तो सभी का माजरत मोगलानी ना बाबू सिलसिला में सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yuya Granular Mitti.
8: अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियुनि नाहिनि थींदियूं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहमतनामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिंजी अमेरिका भञकड़ी कई आहे। अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मुयसर न रहिया आहिनि। तहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयार करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻूणनि फ़ौजियुनि जे मान में आजियाणो। मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साहरा SPR मौजूदु फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻूणे फ़ौजी सरबराहन समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक थिया। फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई। अॻूणनि फ़ौजियुनि पारां बे अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार। क़ौमी इतिहाद अमुन ऐं खु़शहालीअ लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाउ। NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर

सिंध मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ छाछरो वेझो घर जे मिलियो आहे। सखर जे सिटी फर केनाल मां राज मां बि हिकु ॼणे जो लाश न थी सघी आहे। डहरकीअ में शहीद साफ़ी मोहम्मद बचल गुंजो जहिड़ो ॾोहो साबित थियल धरती लख रुपया

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: हर दिन हर पहर ज़िंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 3:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन। GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है अहमद को छोड़ने की?
1: मुझे लगता है तुमसे शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रख सकती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: तब मेरी मामू मुझे छोड़कर चली गई।
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कैसे जी रहा था।
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी
3: की। तुम्हारी मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएंगे।
4: पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अदालत रिमार्क्स डींदे चयो त वालिद खानदान ऐं शहरी परेशान आहिनि। हिकु माण्हू जो क़तल थियो आहे, जांच करे हक़ीक़तूं साम्हूं आणियो। अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाधि करे छॾी। पुलिस सां जांच में सहकार करण जी हिदायत। वकील जबरान नासिर चयो त मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था। गुड्स ट्रांसपोर्टर जी मुलगीर हड़ताल 8 ॾींहं बि जारी। कराची पोर्ट कंटेनर सां भरिजी वई। मुल्क में सामान जी फरहमी मुतासिर थियण लगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिब रोज़ानो लगभॻ 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकरंदा आहिनि, पर हड़ताल सबब रूकजी विया आहिनि। हड़ताल सबब मुल्की मैशियत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सान थियो आहे। शादी जे बहाने पाकिस्तान घुराए कैद करण जी शिकायत ते नौशिया नारी हैदराबाद मां बाज़ियाब। नौशिया जी नारी शिकायत ते वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जी कार्रवाई। मरलिन मैसेज खे बाज़ियाब करायो। कोर्ट जे हुकुम ते पुलिस कार्रवाई करे नारीअ खे बाज़ियाब करायो। चक में करोड़ा ऐं जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में फायरिंग। वाटेड़ो क़तल, हिकु ज़ख़्मी बचल भयो। थाणे जी हद गोठ गुलाम नबी करोड़ो में ॿिन्ही धुरियुनि विच में फायरिंग दौरान वाटेड़ो आसिफ़ मारिजी वियो। फायरिंग सबब भर पासे जा रहवासी ख़ौफ़ में मुबतला। इलाइक़े में छिकताड़ वधीक, रतो छाण जो ख़दशो आहे। सखर में जूनियर साइंस टीचर जे उमीदवारनि जो मुतालबनि जी मंत्रालय जा जूनियर साइंस टीचर उमीदवारनि जो पासिंग मार्कूं 55 मां घटाए 50

0: करण जो मुतालबो 50 खां 54 नंबर हासिल कंदड़ उम्मीदवारनि खे बि भर्ती वारे अमल में शामिल करण जी अपील। नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रिए पाणी जी खोट, बिजली जी लोड शेडिंग ऐं बदअमनी ख़िलाफ़ JUI जो एहतजाज काठिया मोहला खां रैली कढी अर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो त ज़रिए पाणीअ जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि, शहरनि खां फुरूं बिरो जो मामूल बणियल आहिनि, आबादगारनि खे पाणी ॾेई ऐं मुन बहाल करायो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ छासरो वेझो घर जे कमरे मां औरत कविता मेघवाड़ जो फाहो लॻल लाश मिलियो आहे। सखर जे सिटी पॉइंट बाईपास वटां खीरसर केनाल मां मालूम छायो आहे, सुञाणप न थी सघी आहे। सखर बैराज मां बि हिकु ॼणे जो लाश मिलियो आहे, सुञाणप न थी सघी आहे। डहरकीअ में शहीद साफ़ी मोहम्मद बचल गुंजो जे क़तल जो जरगे ज़रिए निबेरो ॾोह साबित थियण ते इल्ज़ाम हेठि आयल धरती ॾोह साबित 1,20,00,000 रुपया ॾंड लागू। राउती में शहीद साफ़ी मोहम्मद बचल गुंजो जे क़तल जो निबेरो मियां रफ़ीक अहमद जे सरपंची हेठि थियो। मोहम्मद बचल गुंजो खे अगस्त 2024 में राउती थाणे जी हद में क़तल कयो वियो हो। दादू में 1.5 करोड़ रुपयनि जे सोन चोरी थियण वारे वाके जो ड्रॉप सीन, चोर फरियादी ऐं संदसि तालो निकितो, फरियादी दुकानदार गिरफ़्तार। SSP दादू चयो आहे त CCTV ऐं जियोफेंसिंग ज़रिए जांच दौरान चोरी जो ड्रामो पधरो थियो। सोन चोरी करे खणी वियल दुकानदार जो सालो अर्शद जोयो फरार थी वियो। वधीक जांच जारी आहे। इंडोनेशिया जे साहिली इलाइक़े में ज़िलज़िलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड। ज़िलज़िले सबबि केतिरियूं ई इमारतूं पट, 20 ॼणा फौत, केतिरा ई ज़ख़्मी। इंडोनेशियाई साहिल वेझो आयल ज़िलज़िले सबबि रहवासी घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। किरियल इमारतनि जे मलबे में दॿियल माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM की आवाज,
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

फिर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

0: बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। एनडीए में चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म के मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म पारां एनडीए के सूबन से सहकार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ चयो तो मुतासरन के सहूलतूं फराहम कई वन। कराची की अदालत में नौजवान व्यापारी मीर रजा केस की बुधनी। अदालत पारा जांच में सुस्ती से गणती जाहिर। 24 अगस्त ताईं जांच मुकम्मल करे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत रिमार्क्स दींदे चयो तो वालिद खानदान ए शहरी परेशान आहिन। एक माण्हू जो कतल थियो आहे। जांच करे हकीकतूं साम्हूं आणियो। अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाधि करे छॾी। पुलिस सां जांच में सहकार करण जी बि हिदायत। वकील जिबरान नासिर चयो त मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था।

गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जी मुल्क गीर हड़ताल 8 ॾींहं बिजारी, कराची पोर्ट कंटेनर सां भरिजी वई, मुल्क में सामान जी फरामी बि मुतासिर थियण लॻी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिब रोज़ानो लॻभॻ 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकरंदा आहिनि, पर हड़ताल सबब रुकजी विया आहिनि। हड़ताल सबब मुल्की मैशत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सान थियो आहे। शादी जे बहाने पाकिस्तान घुराए क़ैद करण जी शिकायत ते इंडोनेशियन नारी हैदराबाद मां बाज़ियाब। इंडोनेशिया जी नारी जी शिकायत ते वुमेन डिपार्टमेंट जी कार्रवाई, मर्लिन मैसेज खे बाज़ियाब करायो। कोर्ट जे हुकुम ते पुलिस कार्रवाई करे नारी खे बाज़ियाब करायो।

0: दादू में 1.5 करोड़ रुपयनि जे सोन चोरी थियण वारे वाके जो ड्रॉप सीन, चोर फरियादी ऐं संदसि सालो निकितो, फरियादी दुकानदार गिरफ़्तार। SSP दादू चयो आहे त CCTV ऐं जियो फेंसिंग ज़रिए जांच दौरान सोन पधरो थियो। सोन चोरी करे खणी वियल दुकानदार जो सालो अर्शद जोए वधीक जांच जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।
5: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
3: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: सदान जिम्मेवारी खणंदे नवन सूबन जी ओनरशिप खणन, नवन सूबन जो क्याम कौमी मसलो आहे, सियासत जे वर न चाढ़ियो वञे। मौजूदा हालतू मुल्क में नई वर्किंग आर्डर जो घुर्जाऊं आहिनि, जंहिंमें को बि शक नाहे। केपीअ में हज़ारा सूबे जो मुतालबो नओ नाहे।

0: Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अबनाए हुर्मस के जल्द अमरीकी इलाइक़ो करार डेण जो ऐलान। न्यूयॉर्क में तकरीब के खिताब कंदे अमरीकी सदर चयो त ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द अबनाए हुर्मस के अमरीकी इलाइक़ो करार डेण जो बि ऐलान कंदुसि। व्हाइट हाउस अबनाए हुर्मस बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो। अमरीका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़्ती चयो त इस्लामाबाद मफ़ाहमतनामे में जंगबंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिंजी अमरीका भञेकड़ी कई। अमरीका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मौसर न रहिया आहिनि। तहरान अमरीका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयार करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जानती नहीं हो जुबीन, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम जब साथ होती हो ना तो दिल करता है कि हर वक्त बस फूलों की बारिश होती रहे। हमेशा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत के रिश्ते में कैद करना चाहता हूँ।
1: लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ।

0: 19 अप्रैल से जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: तहज़ीब अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: brought to you by
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: Essentially that's what we have the blockade, no ships get through unless we want them to।
5: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अबना हुरमस के जल्द अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण जो ऐलान। न्यूयॉर्क में तकरीब खे ख़िताब कंदे अमरीकी सदर चयो त ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग ख़त्म करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द अबना हुरमस खे अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण जो बि ऐलान कंदुसि। व्हाइट हाउस अबना हुरमस बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो। अमरीका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो, पैगामनि जी ॾे वठि हूंदियूं। ईरान इस्लामाबाद मफ़ाहमत नामे में जंगबंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिंजी अमरीका भंजे कड़ी कई। अमरीका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मौसर न रहिया आहिनि। तहरान अमरीका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयार करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो।

0: गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जी मुल्कगीर हड़ताल 8 ॾींहं विचारी कराची पोर्ट कंटेनर्स सां भरिजी वई। मुल्क में सामान जी फरामी बि मुतासिर थियण लॻी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिब रोज़ानो लगभग 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकरंदा आहिनि, पर हड़ताल सबबि रुकजी वञनि था। हड़ताल सबबि मुल्की मैशत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सान थियो आहे। चक में कलोड़ा ऐं जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में फायरिंग वाठड़ू कतल समेत 2 ॼणा कतल थी विया। कोट गुलाम नबी कलोड़ो में धुरनि विच में झेड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे में वाठड़ू आसिफ मार ऐं बशीर जतोई कतल थी विया। फायरिंग सबबि भरपासे जा रहवासी ख़ौफ़ में मुब्तला। सखर में जूनियर साइंस टीचर्स जी उमेदवारनि जो मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाज। जूनियर साइंस टीचर्स उमेदवारनि जो पासिंग मार्क्स 55 मां घटाए 50 करण जो मुतालबो। 50 खां 54 नंबर हासिल कंदड़ उमेदवारनि खे बि भर्ती वरी अमल में शामिल करण जी अपील।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी।
2: तहज़ीब व सकाफ़त से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

अभी बुधोप्या जीए हैदराबाद अभी बुधोप्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: के उर्दू में कजो भले तारे सिद्धी मीडियम हुए वी डू अप्रिशिएट वी डू लाइक इट पर असा ये चवन तो कुछ प्रोग्राम जी समझो जो अप्रोच ज्यादातर मानू तक पुजन खपे तो कुछ प्रोग्राम अड़ा हुजन जी तक उर्दू में फीडबैक दिनो दिनो पॉजिटिव दिनो कि मां तांजी मैनेजमेंट ताई ऐं बाबर ताई ये गाल पुजाई नो
1: बिल्कुल
0: अगर वो चाहिंदा त असां इन खे उर्दू में कन्वर्ट कंदासे इंशाल्लाह जरूरत पवंदी कुछ प्रोग्राम उर्दू में कुछ सिंधी में त असां इन खे कैरी ऑन कंदासे छो कि लीगल प्रोग्राम जो पर्पज इहो आहे त माण्हुनि ताईं इल्म जी ॼाण प्लस में कानूनी ॼाण हर माण्हू जे अप्रोच में न हूंदी आहे अगर वंस इन खे अगर कानूनी ॼाण मिली थी वञे त हू ॻाल्हाइण जे लाइक़ था थी वञे माना ईअं सम्झो त जेके गुंगे खे ज़बान ॾेई छॾबी
1: आहे
0: अगर माण्हू खे पंहिंजे राइट जी ख़बर पइजी थी वञे त हो हिकु स्टेप ॿाहिरि थो निकिरी अचे पंहिंजे राइट जे करे पंहिंजे हक़ जॾहिं सम्झे थो पियो त हुनखे ॻाल्हाइण बि अचे थो पियो पंहिंजो हक़ वठण बि ॼाणे थो पियो
1: इन में तव्हांजो तमामु सुठो किरदार आहे तव्हां लॉ जे बारे में जेका नॉलेज ॾियो पिया तमामु घणी एप्रिशिएट
0: बेसिकली इट इज़ योर ओन विजन इहो तुंहिंजो विजन आहे इनखे जेतिरो आहे अञा प्रमोट कंदा था वञो ऐं वंस अगेन मां तव्हांखे जेको आहे न मुबारक बि ॾींदुमि हिन ॻाल्हि ते त तव्हां रिसेंटली हाणे पंहिंजी जेको आहे न शॉर्ट क्लिप्स ठाहिण बि शुरू कयूं आहिनि की जेतिरो थी सघे त असां लॉ जी नॉलेज खे इम्पार्ट कयूं छोकी हिन ते तमामु लिमिटेड प्रोग्राम्स हूंदा आहिनि छोकी जनरल प्रोग्राम्स ई बि हूंदा आहिनि मिसाल गाननि जा प्रोग्राम बि थी वेंदा आहिनि एंटरटेनमेंट जा प्रोग्राम थी वेंदा आहिनि हेल्थ जा प्रोग्राम थी वेंदा आहिनि हिननि ते स्पेशली थोरा घटि प्रोग्राम हूंदा आहिनि बहरहाल तव्हांजे तवसुल सां ऐं तव्हां जहिड़ा अलाए केतिरा टैलेंटेड माण्हू ॿाहिरि वर्कआउट करनि था यूट्यूब जे थ्रू
1: बिल्कुल
0: सोशल मीडिया जे थ्रू की माण्हुनि खे असां लीगल अवेयरनेस ॾियूं सो असांखे बि ख़ुशी थिए थी की असांखे पंहिंजो जेकी अलाह जी तरफ़ा मौला जी तरफ़ा असांखे इल्म आहे असां ओतिरो इम्पार्ट कयूं था इहो बि सदिका जारी आहे हिकिड़े क़िस्म
1: बिल्कुलु
0: ईअं मां तव्हांजे प्रोग्राम जे तवसुल सां मज़े सां तव्हां इहो फील कंदा हूंदो वन एंड हाफ ईयर असांखे ॾेढ साल खां असांखे मथे थी वियो इहो प्रोग्राम कंदे कंदे मां हमेशा हिकिड़ो लफ़्ज़ रिपीट कंदो आहियां की मौला जो फरमान आहे की इल्म तव्हां वटि ॿिए जी अमानत आहे
1: बिल्कुलु
0: ऐं जॾहिं अमानत आहे त पोइ असांखे ॿिए ताईं बि पुॼाइणी आहे कोशिश कंदा आहियूं की बेस्ट खां बेस्ट ॾियूं ऐं बेस्ट खां बेस्ट सोल्यूशन बि ॾेई सघूं
1: बिल्कुलु
0: जे माण्हुनि खे हुननि जा पंहिंजा सोल्यूशन ऐं रेज़ोल्यूशन मिली सघनि हुननि जे इशूज़ जा
1: ऑल राइट सो सर तमामु बहितर तमामु सुठो असांखे जेको आहे त स्टार्टिंग में तमामु सुठी गुफ़्तगू कई आहे हाणे असां टॉपिक ते असां अचूं पिया जेको असांजो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 आहे वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट
0: बाबर द सोल पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट इज़ टू विद द वेलफेयर ऑफ द माइनर ॿार जी परवरिश कीअं कजे ॿार जी कस्टडी जो ॿार जे लाइ कहिड़ो गार्डियन अपॉइंट कजे ॿार जी स्कूलिंग ऐं बेसिक पर्पज़ इहो आहे की जॾहिं बि को ॿार जेके असां वॉर्ड चऊं अगरि उनजी पेरेंट्स जे थ्रू या डाइवोर्स थी वञे पीउ माउ जी डाइवोर्स थी वञे पीउ माउ कहिड़े बि तरीक़े सां सेपरेटेड थी थो वञे या उहो ॿार ऑर्फनेज थी थो वञे या थीम थो थी वञे त उनजी परवरिश ऐं उनजी वेलफेयर जे लाइ इहो एक्ट क्रिएट कयो दैट इज़ कॉल्ड गार्डियन इन वॉर्ड एक्ट सोल पर्पज़ जो इन एक्ट जे थ्रू प्रोसीजर ॿुधायो वियो आहे तरीक़ा ॿुधाया विया आहिनि त कंहिं ॿार जो गार्डियन कीअं अपॉइंट थींदे कंहिं ॿार जी कस्टडी कीअं ॾिजे कंहिं ॿार जी कंहिं बि ॿार जी जेको कहिड़े बि तरीक़े सां पंहिंजे पीउ माउ खां विछड़ी चुको या ऑर्फनेज थी वियो आहे उनजी वेलफेयर कीअं कजे ऐं हुनजी प्रॉपर्टी जी वेलफेयर कीअं कजे उहो सॼो जो सॼो एक्ट हिन सां एसोसिएटेड सां रिलेटेड आहे
1: ऑल राइट ऐं सर हिन में जीअं हाणे हिन एक्ट में तव्हां पर्पज़ असांखे ॿुधायो हिन में कुझु डेफिनेशन आहिनि जीअं गार्डियन थी वियो माइनर थी वियो वार्ड थी वियो त इन ते अव्हां असांखे ॿुधाईंदा त गार्डियन छा आहे ऐं माइनर छा खे पियो चयो वञे एज़ वेल एज़ वार्ड छा खे
0: बाबर हिन एक्ट जे मुताबिक़ माइनर जो मतिलबु आहे की उहो ॿार that has not attained the age of 18 years
1: chhe
0: 18 salan ji age te na pugo
1: hoje under 18 matlab
0: theek hai ekdo law hai the majority act 1758 mana 1758 je mutabar wahi balig 18 ji tarah is clip dithi patient budhaya

0: उहो हूंदो आहे जंहिंजे
1: ओके
0: कोर्ट खां ठीकु असांखे टेस्टामेंट्री तरीक़े सां मिले या नेचुरली मिले जे सी कंट्री जो बि लुक आफ्टर कंदासीं त अगरि के असां छा चऊं सार संभ अपॉइंट करण अचे या हुन जे बारे ॾिसो न हुनजी हुनजे पेरेंट्स जे थ्रू हुनखे मिले थी पई या अगरि हुनजे विरासत में कुझु अचे थो पियो उहा कोर्ट अपॉइंट कंदी आहे सॼी सार संभाल लहंदो बल्कि हुनजे पूरे ताईं हुन सां गॾु हूंदो जेसि ताईं उहो ॿार नथो थी सघे नथो थी वञे
1: असां ॻाल्हियूं त इन जूं जेके आहिनि त कहिड़ियूं जेके आहिनि काइंड्स आहिनि एज़ वेल एज़ नेचुरल आहे त हुन ते थोरो असांजे
0: These are the four kinds of. उनखां बि इलाही थी सघनि पर एज़ पर गार्डियन एक्ट जे हिसाब सां फोर काइंड्स ऑफ जेका न गार्डियनशिप हूंदी आहे सभ खां पहिरियों हूंदी आहे तव्हांजा नेचुरल गार्डियंस नेचुरल गार्डियंस उहे हूंदा आहिनि जेके बायोलॉजिकली असांखे अलाह जी तरफ़ा द गिफ्ट ऑफ द गॉड चवंदा आहिनि जेके असां मदर एंड फादर
1: नेचुरल
0: ॾाॾो ॾाॾी त अञा वेझो ई नेचुरल गार्डियन थी आहे छोकी उहो बायोलॉजिकल गार्डियन असांजा असां हुनखे नेचुरल गार्डियन चऊं ठीकु आहे अगरि मिसाल सपोज ॿिन्हिनि मां को हिकिड़ो फौत थो थी वञे त हुनजो जेको वेरी नेक्स्ट गार्डियन हूंदो हुनजी मदर हूंदी अगरि मदर फौत थी वञे त हुनजो फादर हूंदो अगरि ॿिनि गार्डियन हुनजो ॾाॾो हूंदो ॾाॾी हूंदी नेचुरल गार्डियन क्लोज़ ऐं ब्लड लाइन सां तालुक रखनि था
1: पिया
0: देयरफॉर दीज आर कॉल्ड द नेचुरल गार्डियंस पोइ तव्हां थींदा आहिनि डिफेक्टो गार्डियन सपोज आहे आराध हुजे थो हुनजो भाउ थी वञे ईअं बि थींदो आहे की अगरि मदर जी फादर जी ॿी शादी थियल हुजे त हुनजी जेकी सेकेंड मदर आहे स्टेप मदर
1: उहो
0: बि डिफेक्टो में अची सघे थी मक़सदु इहो आहे त ॿार जी वेलफेयर खे ॾिसणो पवंदो ॿार जी नर्चर ऐं हिन जी जेकी न सुठे तरीक़े सां नवरिशमेंट उन में

0: सपोज बाबर या सपोज कोई भी मुझे बार जो है ईंदर टाइम में जेको आहे न गार्डियन थींदो मुंहिंजे बिहाफ ते. हुन लाइ असां हिकिड़ो टर्म इस्तेमालु कंदो पॉज़िटिव सेंस सां. हिकिड़ो यूरोप में हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे, ख़ासि करे हिकिड़ी अमेरिकन सोसाइटी में हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे, द गॉड फादर.
1: ऑलराइट,
0: त हुनजो पोयां जेको सरपरस्त थी करे हुनजो पोयां को गॉड फादर हुजे. गॉड फादर जो मतिलबु आहे सार संभाल,
1: सार संभाल
0: जेको पीउ जे माउ जे मरण खां पोइ या हुननि जे हालात लाइ वञणु चाहे थी सघे थो, मेन गॉड फादर अपॉइंट थींदा आहिनि की माना असां हिन जे ॿार जी संभाल असां हलंदा. दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ.
1: जीअं तव्हां टेस्टामेंट्री चयो गार्डियन, हिन में ईअं आहे त मिसाल को लेट सपोज के फादर जेको आहे हुनखे ख़बर हूंदी आहे त हाणे मुंहिंजो जेको आहे त वक़्तु क़रीब आहे डेथ करण वारो आहे, त हुन खां पहिरियों पंहिंजी विल लिखी छॾंदो आहे त यार मुंहिंजे चिल्ड्रन जी जेका आहे ही वेलफेयर कंदा या ही हुनजी जेकी आहे उहो कंदो. ईअं चई सघूं
0: था, ईअं चई सघो था. अगरि
1: ओके, अच्छा मदर बि
0: मज़ो न हूंदो त फादर ई हुजे. पेरेंट्स माना ॿिनि ॿ शयूं माना फादर एंड मदर मिलंदा त पेरेंट्स सटाईंदा.
1: ओके,
0: त ॿिन्हिनि मां कोई बि डिक्लेयर करे सघे थो मुंहिंजे मरण खां पोइ मुंहिंजे ॿार जी परवरिश हिन जे हवाले, ऐं मुंहिंजी तरफ़ां जेके बि प्रोप ॿार जी वेंदी ट्रांसफर थींदी उन जी बि सार सां मूंखे उमेद हूंदी अवेयर हूंदा. बेसिक रूल्स गो बैक मैन.
1: ठीक है,
0: त जॾहिं हो कंहिं बि तरीक़े सां या कुझु हम सिटी में

0: फ्रेश ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में। डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
1: छा तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहियो था जिते हुजे तहफुज जदीद सहूलियतूं ऐ मंजूर थियल सिक्योरिटी
2: तपोई भलीकार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
1: सखर शिकारपुर रोड ते
2: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामू
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
2: एक शानदार ऐ काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
1: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
2: रिहायशी प्लॉट 80-120 150 ऐ 200 गज जा
1: ऐ कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट 50 गज ऐ 600 गज
2: हिते तव्हांखे मिलन थियूं जदीद सहूलियतूं
1: साफ मिठो पाणी
2: बिजली गैस
1: 24 कलाक सिक्योरिटी
2: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल ऐं सबका वॾी ॻाल्हि ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे
1: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौक़ो बणाए थो
2: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
1: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री
2: कॉन्टेक्ट
1: 03-00-93-17-252
2: एंड 03-13-27-57-860 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
1: तव्हां जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन इंतिखाब
3: सोना सिहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादे खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम
2: अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक बिजनेस की प्रमोशन जॉब वैकेंसीज पब्लिक अनाउंसमेंट्स इवेंट्स सेमिनार्स स्पेशल ऑफर्स स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03-00-93-19-667
4: यार मछा क्या किथे वन्या घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी
5: छो भला छा छुआ तोखे साफ साफ बुधा मसलो छाए
4: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुंझी ते मसलन जी कतार लगल आहे न भुख सही लगे थी ऐं जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वञन था ऐं सजो ॾींहुं सुस्ती महसूस थे थी कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां
5: यार तुझा घणा न बस हिक ई मसलो आ
4: हिक इहो कीअं
5: हा तुंहिंजो मैदो ख़राब आहे छा तो न ॿुधो आहे मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी
4: त पोइ मां छा कयां
5: सोलो हल आहे इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स हे कुदरती जुज़नि मां तयार कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुल ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो बुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई पेट फूकजण ख़तम सुस्ती ख़तम जिस्म में ताक़त ईंदई
4: वाह यार वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
5: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवाखाना रोड़ी ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 03-55-58-00-616 शिफ़ाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त छा तव्हांजो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA ख़ासि सहूलियतूं स्कॉलरशिप मौजूद 2 सालनि जे कोर्सेस में एडमिशन बिल्कुल फ्री जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज़ मुकमल लाइब्रेरी

0: वेलफेयर थो करे।
1: गार्डियन की ड्यूटीज सब का पेरों बल्कि गार्डियन की अगर डिठो वे अंडर गार्डियनशिप एक्ट में डिठो वे तो गार्डियन की टे ड्यूटी बेसिक टे ड्यूटीज लिखल सेक्शन में तो टे लिखल उनके इलाही वधाए सोता या मल्टी में खी वही एरियाज में सब का पे स्कूलिंग बार की स्कूलिंग बंद थे खपे बार की हेल्थ बार की नरिशमेंट आर की नर्चर जी नर्चरिंग आर की नेचर से कोई फर्क न अच्छे मुझे हेल्थ सुठी हुए टू मेंटेनेंस मेंटेनेंस मतलब बार के टाइमली खाधो भी सुठो मिले रहण भी सुठो हुए बार जा विजिटेशन भी थींदा रहन बार जो शादियों फोतियों गमियों शादियों मुरादियों जो अस लफ्ज इस्तेमाल कहनी सिंधी लैंग्वेज में वह बार की प्रॉपर तरीके से थन्दी रहन यह बेसिक जिन ड्यूटीज इन कें भी गार्डियन की कि जैस तई वो 18 साल की एज ते नथो पुजे तेस तई वो लुक आफ्टर करण उनको फर्ज है।
0: ऑल राइट right. मतलब ये टे चौथा सर ड्यूटीज एंड गार्डियन ऑल राइट सर डायवोर्स से अगर असा अचू पाया पेरेंट्स के विच में खुदा न खास डायवोर्स भी थी वे और माइनर की कस्टडी मदर वटे पी अची वे जो फादर आने के विजिटेशन मिली सके थी या उनके अलो आए या ना है।
1: हाँ वेरी गुड क्वेश्चन बाबा इनके साथ चाहता हूँ विजिटेशन राइट
0: ओके
1: फैमिली लॉ में विजिटेशन राइट
0: चाहो
1: गार्डियन में जो जिक्र है विजिटेशन राइट गार्डियन विजिटेशन जो राइट जो पर्पज यो है कि पीमा सेपरेट थी
0: जी
1: या पीमा फोत थी उनका नेचुरल गार्डियन भी फोत थी कस्टडी बे के वट वे थी उन टाइम में अगर सपोज कोई बार जो ही क्लोज रिलेटिव चे तो जै वट कस्टडी जो गार्डियन अपॉइंट थो असेंगे बार के असा मिलन डनो वे क्योंकि वो हाली टेम्परेरी कस्टोडियन
0: ठीक है
1: ठीक है असा के खबर पई है।

0: अने जेको ॿार आहे हुनजी जेकी न जेकी वेलफेयर आहे उहा सही नथी
1: थिए।
0: काइंडली असांखे ॿार सां मिलण ॾिनो वञे, पोइ हुन में इहो छा थींदो आहे त अगरि सेपरेटेड आहिनि, डाइवोर्स्ड आहिनि, ॿार हाली यकदमि माउ खणी वई पाण सां गॾु पीउ खे न ॾिनई, ॿी एप्लीकेशन ॾींदो, पेरेंट एप्लीकेशन, फादर एप्लीकेशन ॾींदो त मुंहिंजे ॿार खे मूंसां मिलण ॾिनो वञे। अगरि ॿार पेरेंट वटि रहिजी विया आहिनि, माउ खे कढी छॾियो अथनि, माउ खे कंहिं या हुनजी वालदा खे कहिड़े बि सिचुएशन सां, ॿार सिचुएशन खां हुनखे बेदख़ल करे छॾियो अथनि, या हुनखे सपोज डाइवोर्स मिली वई आहे, त उहा लेडी अगरि चाहे त कोर्ट में एप्लीकेशन ॾेई करे विज़िटेशन राइट जो हक़ वठी सघे थी पई। ईअं सपोज अगरि गुज़ारे वई आहे, अगरि लेडी गुज़ारे वई आहे, ॿार जा नाना नानी ज़िंदा आहिनि, त नाना नानी बि हुनजो विज़िटेशन जो राइट हक़ वठी सघनि था। वाक़ई असांजो जेको ॾोटो आहे, असांजो जेको पोटो आहे, वाक़ई उहो सुठी कंडीशन ते आहे या न आहे। पोइ उन सिचुएशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी अथॉरिटी आहे 2018 जी, उन में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चवे थी पई त कोर्ट खे हिकिड़ो टेम्पररी ऑर्डर बि इशू करणो आहे, अलो बि करणो आहे, ऐं प्लस में उनखे मुलाकात करण जी इजाज़त बि ॾियणी आहे, ऐं पूरो जो पूरो शेड्यूल ठाहे ॾियणो आहे। हफ़्ते में सपोज़ शेड्यूल ईअं, हफ़्ते में ॿ ॾींहं ॿार पंहिंजी पीउ वटि रहंदो, हफ़्ते जा टे ॾींहं पंहिंजी माउ वटि रहंदो। ईद उल अज़हा जी अगरि ॾींहं अचनि था पिया त अगरि 15 रमज़ान पंहिंजे पीउ माउ वटि रहंदो, 15 रमज़ान पंहिंजे वालदा
1: वटि रहंदो।
0: ईद जा टे ॾींहं त ईद जो चंड राति खां वठी करे ईद जे ॿिए ॾींहं ताईं पीउ वटि रहंदो, वरी ॿिए ॾींहं खां वठी करे ईद जे टे ॾींहं ताईं पंहिंजी माउ ऐं मदर सां रहंदो। ईअं अगरि स्कूलिंग आहे, स्कूलिंग जी फीस वग़ैरह जेकी बि हूंदी उहा पेरेंट भरंदो,
1: ठीकु आहे।
0: ऐं उन खां अलावा अगरि ॿार पंहिंजे पीउ ॾे वञणु चाहे त सुबुह जो 8 बजे खां वठी करे शाम जो 5 बजे ताईं उहो पंहिंजे पीउ वटि वञी सघे थो, ऐं शाम खां बाद में पंहिंजी वालदा
1: वटि सघे थो।
0: त कोर्ट इहो छा करे ॾिनो, हिकिड़ो पूरो शेड्यूल ठाहे ॾिनो आहे त हिन हिन सिचुएशन खे ॿार खे तव्हां पंहिंजे हस्बैंड खां ऐं हिन खां मिलायो। पर असां वटि सिचुएशन छा आहे, कॾहिं कॾहिं इलाही केसिस असां बि हलाया आहिनि त घटि परमिशन मिलंदी आहे ॿाहिरि वञण जी, जेकी बि विज़िटेशन थींदियूं आहिनि सभु कोर्ट जे अंदरि थींदियूं
1: आहिनि।
0: पोइ उते हिकिड़ा विज़िटेशन जे लाइ वार्ड हाउस ठाहिया विया आहिनि, जेके चिल्ड्रन हाउस चवंदा
1: आहिनि,
0: वार्ड मतिलबु माइनर ॿारनि जा हिकिड़ा नंढा माना हुते हिकिड़ा ई सम्झो कमरा ठाहिया विया आहिनि, जिते ॿारनि जा खिलौना, ॿार जी हर उहा बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल हूंदी आहे, जंहिंमें अगरि माइनर आहे त उहो इंजॉय करे सघे पंहिंजे पेरेंट्स सां। पोइ कोर्ट जी तरफ़ां मिसाल सपोज 12 बजे खां 2 बजे ताईं या सुबुह जो 9 बजे खां 12 बजे ताईं टाइम मुक़रर हूंदा आहिनि, त उन दौरान तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे शयूं, कपिड़ा, खिलौना वठी करे ॾेई छॾियो, पोइ उहो पंहिंजे पेरेंट्स सां बाद में जीअं टाइम ओवर थींदो उहो पंहिंजे पेरेंट्स सां खणी हलिया वेंदा। सो विज़िटेशन राइट जो पर्पज़ इहो हूंदो आहे टू लुक एट द माइनर इज़ बींग ट्रीटेड वेल ऑर नॉट, ॿार पंहिंजी लाइफ खे सही इंजॉय करे थो, वेल मेनर्ड आहे, वेल मेंटेन्ड आहे। बसि पर्पज़ इन जो इहो हूंदो आहे त असां ॾिसूं त ॿार पंहिंजी जाते
1: सही वेलफेयर थी,
0: सही आहे या न।
1: अच्छा, इन ते सर हिकिड़ो ॿियो क्वेश्चन मुंहिंजे ज़हन में अचे पियो त डाइवोर्स खां बाद में जेको आहे त या डाइवोर्स थी चलो बाद में त अचूं, कंहिंजी हस्बैंड फादर या मदर जेको आहे त अगरि डेथ थी वञे ऐं मदर वटि ॿार रहियल आहे, माइनर रहियल आहे, ऐं हू ॿी शादी पई करे वठे, ठीकु आहे, त सोतेलो पीउ हुनजी सही तरह वेलफेयर कोन थो करे, त इन सिचुएशन में माइनर खे जेको आहे त उन वालदा वटि कस्टडी रही सघे थी या हुनजे लाइ कोर्ट जेको आहे डिसाइड कंदी त हिन जो कस्टोडियन ॿियो थिए।
0: इहो डिपेंड करे थो, सपोज़ अगरि छोकिरी आहे, अगरि छोकिरी आहे उहा मेजर आहे त उहा गैर महरम आहे पंहिंजे सेकेंड माना मदर जे गैर महरम आहे। अगरि उहा चाहे त पंहिंजे वालिद चाहे त उहा कस्टडी वापसि वठी सघे थो अर्ली एज में।
1: वालिद त हुनजो डेथ करे वियो,
0: वालिद ॾाॾो
1: ॾाॾो
0: ॾाॾो या हुनजो चाचो हुनजी कस्टडी वठी सघे थो, बाबा हे न्याणी असांखे ॾियो,
1: हुनजी
0: परवरिश असां कंदासीं। ॿी सिचुएशन में जेकॾहिं कोर्ट कंसीडर करे थी पई, जीअं असां ॿुधायासीं क्वालिटीज़, असां ॿुधायासीं त छा क्वालिटीज़ हुजणु खपनि, अगरि कोर्ट कंसीडर करे थी, ठीकु आहे न, इट इज़ ऑब्ज़र्विंग डेट अंडर द आई ऑफ द लॉ के अगरि असां मदर आहे हुन ॿी शादी कई आहे पर स्टिल उहो हुनजी सुठी परवरिश करे सघे थो त पोइ हुनखे कोर्ट खे एतिराज़ न हूंदो आहे।
1: अच्छा,
0: त बाबा मदर राज़ी आहे, मुंहिंजो जेको सेकेंड हस्बैंड आहे उहो राज़ी आहे, त बाबा तव्हांजी न्याणी खे पंहिंजी न्याणी वांगुरु रखंदो, त अल्टीमेट पर्पज छा हिन एक्ट जो, टू वेलफेयर ऑफ द माइनर। जैसे ॿार जैसे उहो एडल्ट थी थिए या एडल्टहुड खां पोइ हुनजा पंहिंजा डिसीशन्स आहिनि, हुनजी स्कूलिंग प्रोवाइड करनि था पिया, हेल्थ हुननि जी सुठी रखनि था पिया, हुन जी छा चवंदा आहिनि इहो मेंटेनेंस हुन अगरि ॿार जी सुठी आहे त हुन खां बेस्ट ऑप्शन ॿार लाइ त कुझु न आहे छो की सोल पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट इज़ फॉर द वेलफेयर ही ॿार खे हर तकलीफ़ खां बचाइणो
1: आहे
0: ॿार खे सुठी परवरिश ॾियणी आहे द सोल पर्पज़ ऑफ दिस
1: जिते बि हुन जी कस्टडी हुजे
0: पोइ ॾिठो वञे अगरि सपोज पहिरियों हाणे कंहिंजी धीअ शादी थी वई आहे सेपरेट थी विया आहिनि हाणे हस्बैंड जो उहो करेक्टर ई न आहे हस्बैंड इमोरल एक्टिविटीज में आहे हस्बैंड जुआरी आहे हस्बैंड शराब थो पीए पियो हिकिड़ो जनरल सवाल थो सिटीज़न छा तव्हां हलो कंदो कंहिंखे
1: न बिल्कुल बि न कंदो
0: भले न्याणी आहे भले पीउ हुनजी धीउ
1: आहे
0: बट द करेक्टर ऑफ द पर्सन इज़ सो बैड वट काइंड ऑफ डिसीशन यू आर गोइंग टू टेक
1: एक्ज़ेक्टली नॉट
0: तव्हां छा कंदो एट दैट सिचुएशन तव्हां फेवर ई ॾींदो की बाबा लेट द माइनर बी रिमेन विद द मदर अगरि हुनखे सुठो एनवायरमेंट मिले थो पियो सुठो घर मिले थो पियो सुठी स्कूलिंग मिले थी पई that is a very good thing for the minor ke ultimate sole purpose unjo serve to the
1: welfare the
0: so that is the reason ke depend kare to the what kind of situations are there when the appointment of the guardianship is being considered
1: all right sir sir section 19 of the act jeko ta che un mein aaye the guardian jeko ta not appointed by the court inhe ke thodo define kanda ta ee section chapo che exactly
0: हिन जो पर्पज हिन सेक्शन जो पर्पज़ इहो आहे की हाणे लिकल आहे द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटेड बाय द कोर्ट हिन जा सिर्फ़ चार इनक्री ॾींहं सभ खां पहिरियों इहो आहे सपोज की अगरि ॿार जेको वार्ड आहे हुनजी सॼी जी सॼी जेकी वेलफेयर आहे उहा स्टेट पाण थी खणे स्टेट जो मतिलबु आहे कोर्ट वार्ड कोर्ट उहा पाण थी खणे प्रॉपर्टी जी बि हुनजी पंहिंजी बि त हिन सिचुएशन में नो नीड टू अपॉइंट द गार्डियन छो की कोर्ट पाण जी ज़िमेदारी खणे थो हुनजी जेकी बि वेलफेयर आहे उहा कोर्ट जी ज़िमेदारी आहे ठीकु आहे देन ॿार एडल्ट ॿार मेच्योर थी वियो आहे वॾो थी वियो आहे ॿार सोच समुझ वारो थी वियो आहे पंहिंजी प्रॉपर्टी खे या पंहिंजे वाले साहब जी तरफ़ां मदर जी तरफ़ां फैमिली जी तरफ़ां अगरि उहो ज़िमेदारी पाण डिसीशन पाण वठी सघे थो त पोइ हुनजी गार्डियन अपॉइंट करण जी ज़रूरत न टियों इहो आहे की अगरि ईअं सम्झो की हिकड़ी नाबालिग न्याणी आहे अंडर 15, अंडर 17, अमूमन तव्हां रूरल एरियाज़ में ॾिठा हूंदा अर्ली चाइल्ड मैरिज शादी जो कॉन्सेप्ट आहे पंद्रहनि सालनि में सोरहनि सालनि में ॿार शादी कराए छॾी बट द पेरेंट्स हैज़ बिन सेपरेटेड या शी हैज़ बिन ऑर्फन वीचारी यतीम थी वई आहे त इन सिचुएशन में हुनजी शादी थी वई आहे त अगरि हस्बैंड उन करेक्टर से बीठल आहे जेके असां अर्ली में डिस्कशन कयासीं त कोर्ट अपॉइंट कंदी त गार्डियन जा करेक्टर कहिड़ा हुजनि इल मैनर्ड न हुजे मेंटली चैलेंज न हुजे
1: सही
0: कोई डिसेबिलिटी न हुजेसि कैपेसिटी ऑफ माइंड हुजेसि माना सोच समुझ ज़िंदगी जा सुठा फैसला करे
1: सघंदो हुजे
0: ठीकु आहे ऐं सुठे इख़लाक जो हुजे ठीकु आहे त उन सिचुएशन में नो नीड टू अपॉइंट अनदर गार्डियन जेको तुंहिंजो हस्बैंड पाण ई कोर्ट समुझे थी तुंहिंजो हस्बैंड पाण ई बहितरीन गार्डियन आहे पंहिंजी वाइफ जे लाइ त हिन सिचुएशन में कोर्ट गार्डियन अपॉइंट न कंदी आहे चोथो पॉइंट इहो आहे बाबर के ॿिन्हिनि मां कोई बि अगरि पेरेंट आहे पेरेंट्स में ज़िक्र मां कयो मगर मादर आहे या मदर आहे या फादर आहे ॿिन्हिनि मां कोई बि हयात आहे त हुनजा बेस्ट डिसीशन वठी सघे थो अगरि फादर हयात आहे त मदर बेस्ट गार्डियन आहे अगरि मदर न आहे त फादर इज़ द बेस्ट गार्डियन सो दीज़ आर द फोर कंडीशन जंहिंजे विच में कोर्ट को नयो गार्डियन अपॉइंट नथी करे सघे
1: ठीकु आहे सो सर सेक्शन 20 जेको आहे त फिडिशरी रिलेशन ऑफ गार्डियंस टू वॉट आहे एज वेल एज सेक्शन 25 बि आहे इन ते तव्हां थोरो असांखे डिफाइन कंदा
0: फिडिशरी जो मतिलबु आहे इतमादी रिलेशनशिप
1: ऑल राइट
0: इतमादी जो मक़सदु इहो आहे की कोर्ट कंहिं बि गार्डियन खे को प्रॉपर्टी सां रिलेटेड इशूज़ हुजनि कंहिंजी माइनर सां हुन में काई बि ट्रांसेक्शन थिए थी उहा ट्रांसेक्शन अल्टीमेट ॿार जे ई फेवर में हुजे अगरि कोई इमोबल प्रॉपर्टी आहे कोई प्रॉपर्टी रेंट ते ॾिनल आहे या प्लॉट आहे अगरि प्लॉट सेल आउट बि करणु चाहिनि था त परमिशन लाज़मी आहे उहा परमिशन कोर्ट ई ॾींदी परमिशन पर इहो ज़रूर ॾिसंदी त छा हुन जो बेनिफिट हुन ट्रांसेक्शन जो बेनिफिट माइनर ताईं पुॼे थो अगरि जो बेनिफिट माइनर ताईं पुॼे थो पियो ऐं उहा ॿार जे हक़ में ॻाल्हि वञे थी त उन रिलेशन खे चवंदो आहे फिडिशरी रिलेशनशिप माना कोई बि अहिड़ो ट्रांसेक्शन कहिड़े बि क़िस्म जो जेको घुमी फिरी ॿार खे ई फ़ाइदो ॾे ठीकु आहे ऐं हुनजी जेतिरी बि वॉर्ड आहे जेतिरी बि हुनजी प्रॉपर्टी आहे हुनजी लुक आफ्टर करे बहितरीन तरीक़े सां उन पॉइंट खे तव्हां चवंदा फिडिशरी रिलेशनशिप के गार्डियन हुनजी हर हिकु पॉइंट हर हिकु हुनजी प्रॉपर्टी खे ईअं लुक आफ्टर करे ईअं ट्रांसेक्शन खे ॾिसे जे हो पंहिंजी ज़ाती जिंदगी में पैंजी जाती जिंदगी जा फैसला वठंदो आ, पैंजी जाती प्रॉपर्टी जा फैसला वठंदो आ, ऐं जीअं जाती अमल कबो आ कि हिन सां मूंखे फ़ाइदो पुॼंदो, उन जा सॼा डिसीशन ईअं हुजनि जो पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी जा फैसला वठी, पर अल्टीमेट फ़ाइदो कंहिंखे थिए? माइनर खे थिए।
1: ऑल राइट, सो सर नाउ लेट टॉक अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन अंडर सेक्शन 40, व्हाट इज दिस?
0: तव्हां हिकिड़ो ॿियो 25 पुछियो मूंखां,
1: 25 बि पुछियो,
0: सेक्शन 25। सेक्शन 25 खे अगरि असां डिफाइन कयूं, सेक्शन 25 जो मक़सदु इहो आहे कि अगरि को पेरेंट या कोई बि लीगल गार्डियन नेचुरल हुजे या डिफेक्टो हुजे या टेस्टामेंट्री हुजे, अगरि उहो वठणु चाहे ॿार खां, कंहिं वटि सपोज हिकड़ी टेम्पररी कस्टडी आहे, जेकॾहिं पाण डिस्कशन टेम्पररी कस्टडी आहे, अञा कोर्ट कंहिंखे ॾिनी न आहे, अगरि उहो वठणु चाहे थो त हे ॿार जी जेकी कस्टडी आहे मूंखे ॾिनी वञे, छो की मुंहिंजो जेको ॿार आहे जेको माइनर आहे जंहिं वटि आहे उते प्रोपरली ट्रीटेड नथो थिए पियो, ठीकु आहे, उनखे उन ॿार खे न उहा नरिशमेंट आहे, न उन ॿार खे उहा एजुकेशन आहे, न उन ॿार खे उहा स्कूलिंग आहे, न उन ॿार खे उहो जेको माहौल मिले थो, एनवायरमेंट मिले थो जंहिंमें उहो सुठे तरीक़े सां बा इख़लाक हिकिड़ो माण्हू हिकिड़ो बहितरीन सिटीज़न थी सघे थो, उन सिचुएशन में 25 दाख़िल कंदाऊं कि कोर्ट कस्टडी छा कंदो आहे, चाहे अगरि पेरेंट आहे मदर आहे, सपोज उहा ज़िंदगी नथी ॾेई सघे त उहा वठी करे पीउ जे हवाले करे वेंदा आहिनि, अगरि पीउ आहे उहा ज़िंदगी नथो ॾेई सघे त उहा माउ जे हवाले करे सेक्शन 25 अबाउट दैट। हाणे डिस्चार्ज तव्हां पुछो था, डिस्चार्ज ऐं सीज़ेशन खे मां हिकड़ी कैटेगरी में रखंदुमि,
1: ठीकु आहे।
0: डिस्चार्ज जो मतिलबु आहे माना पंहिंजे कम खां फारिग थी वञणु, सीज़ेशन में इहो हूंदो आहे त अगरि सपोज कोई बि कोर्ट कंहिंखे बि पंहिंजो गार्डियन अपॉइंट करे थी ॿार जो, त अगरि उहे कंडीशन फुलफिल थी थी वञनि त ऑटोमेटिक ई जेकी कंडीशन आहे गार्डियनशिप जी उहा टर्मिनेट थी थी वञे,
1: ठीकु आहे,
0: जंहिंमें अगरि मिसाल ॿार आहे बालिग आहे, ॿार आहे बालिग थी वियो, ठीकु आहे, गार्डियन आहे उहो नेचुरल डेथ करे गुज़ारे वियो, या माइनर आहे वीचारो 18 ताईं पुॻो ई न डेथ करे वियो, ठीकु आहे, त इन सिचुएशन में छा थींदो आहे त असां हिनखे डिस्चार्ज चवंदा
1: आहियूं। ओके,
0: ॿियो इहो डिस्चार्ज जो मक़सदु इहो हूंदो आहे जेके असां सीज़ेशन चवंदा आहियूं, डिस्चार्ज ऐं सीज़ेशन टर्म्स अलॻि अलॻि लिखियल आहिनि गार्डियंस में, पर तत खणंदासीं समरी खणंदासीं तव्हांखे साॻी मिलंदी। ॿियो कोर्ट डिसाइड करे कि जेको गार्डियन आहे उहो गार्डियन उन क्वालिफिकेशन से बीठो या न बीठो, अगरि हुन क्वालिफिकेशन से बीठो आहे त हुनखे कंटिन्यू रखंदे, अगरि उन जेके असां प्रीवियसली क्वालिफिकेशन ॿुधायूं से अगरि उन खां डाइवर्ट थी वियो आहे त ऑटोमेटिक ई उन जी गार्डियनशिप खे डिस्चार्ज करे दे विल अपॉइंट द न्यू गार्डियंस। सो सीज़ेशन एंड द डिस्चार्ज आर द सेम थिंग। बाक़ी रही तव्हांजी रिमूवल ऑफ द गार्डियन, रिमूवल ऑफ गार्डियन में ईअं सम्झो के माइनर आहे, उन ते ज़ुल्म कयो थो वञे, माइनर कंप्लेन करे थो मूंखे पढ़ाई जी जॻह ते मूंखां जेको आहे न ॿिया ग़लति कम था वता वञनि, ठीकु आहे, सपोज़ अगरि असां पंहिंजे माहौल जी रियलिटी अगरि असां माहौल में थोरो ॻाल्हायूं, हूंदो न, मूंखे नथो लॻे ईअं न हूंदो, अलाह करे ईअं न हुजे, कुझु माण्हू छा कंदा आहिनि ॿार जी कस्टडी वठी करे उन मां जेको बि हुननि खे मिलंदो आहे प्रॉपर्टी जे पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे उहो मोबल हुजे या मोबल हुजे कुझु बि मिलंदो आहे, उहो सेल्फ इंट्रेस्ट जे करे ॿार खे अडॉप्ट करे छॾंदा, पोइ बाद में उन ॿार खे माना ग़लति तरीक़े सां इस्तेमालु करणु या अॻिते सेल आउट करे छॾणु या हुनखे
1: बॉलीवुड जी हिकड़ी मूवी बि असां ॾिठी आहे, ईअं आहे त प्रॉपर्टी जी वजह सां जेको आहे त हुनजी केयर कई वेंदी आहे, हुनखे मतिलबु एजुकेशन बि न ॾिनी वेंदी आहे, देन आफ्टर जेको आहे त आफ्टर 18 हुन खां जो सॼी प्रॉपर्टी पंहिंजे नाले
0: माना मिसाल आहे न, त असल में असांजी जेकी मूवीज़ उहे बि रियल लाइफ खां इंस्पायर्ड थी वेंदी, कुझु माण्हू छा कंदा आहिनि हुनजी प्रॉपर्टी ते, असां हुनखे चवंदो सेल्फ इंट्रेस्ट, ॿार खे पालींदा त आहिनि पर पर्पज़ छा हूंदो आहे त जीअं हे वॾो थिए त असां हुनखे एतिरो पाले रखूं जीअं वॾो 18 जो थिए त असां सॼी प्रॉपर्टी पंहिंजे नाले ते कराए छॾूं। सो अगरि उन कंडीशन ते अगरि कोर्ट अगरि कंसीडर कंदी त अगरि जेकी गार्डियन अपॉइंट थियल आहे उन मेनर ऐं उन प्रिस्क्रिप्शन से नाहे बीठो जेके प्रिस्क्राइब थियल आहिनि, ठीकु आहे, उन प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट में नाहे, उन प्रिस्क्राइब्ड मेनर में नाहे
1: बीठो,
0: त कोर्ट छा कंदी हुनखे रिमूव करे छॾी, टर्मिनेट करे छॾी हुन जॻह ते ॿिए कंहिंखे गार्डियन अपॉइंट कंदी,
1: ठीकु आहे। सो सर प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे, तमामु सुठी असां गुफ़्तगू कईसीं अबाउट द टॉपिक गार्डियन। सो लास्ट में तव्हां कहिड़ो असांजे जेका व्यूअर्स खे पैगाम ॾियणु चाहींदा अबाउट दिस एक्ट एंड एज़ वेल एज़ जेके जिते बि तव्हां सम्झो पिया, जीअं तव्हां ई पंहिंजी गुफ़्तगू में इहा ॻाल्हि कई त माइनर्स खे जेको आहे सही तरह ट्रीट न कयो वेंदो आहे कुझु कस्टोडियन पारां, हुननि खे कहिड़ो तव्हां मैसेज ॾियणु चाहींदा?
0: मुंहिंजो मैसेज सिर्फ़ पेरेंट्स खे इहो हूंदो की ख़ुदा रा कॾहिं बि घर में मामलात अहिड़ा थियनि त ॻाल्हियुनि खे मसलनि खे ठाहियो, जहिड़ा थींदा रहंदा आहिनि हर घर में जहिड़ा थींदा आहिनि, पर हर जड़े जो सोल्यूशन कोर्ट न है असा तो वकील हूं ठीक है असा इन सिचुएशन के दिसूं था पे इवन एज अ वकील एज अ जज असि यही मेन जो पर्पज हों के पान में ठही वन
1: सही
0: जडे भी कें कोर्ट में को केस इन आई एम द सोल विटनेस ऑफ दैट थिंग के जज एक हों 100% मैं डिठो आ जजेस के वो 100 न 1000% जो एफर्ट्स दींदा तो ये पेयर ठही वे पा
1: राइट
0: ये जोड़ो ठही वे लास्ट का लास्ट जज पेन घुमायण का अग में डायवोर्स तलाक कुल्ला माना डिक्लेयर करण का अग में मां जजेस के डिठो आ के एडो त राजी कंदा माना अल्लाह जो हदीस रसूल जो हदीस अल्लाह जो आयतू भलिन जा मिसाल आईमा जा मिसाल दुनिया में थींदड़ मुश्किलातू पेरेंट्स जे बारन जे मथो ईंदड़ मुश्किलातू जज जज न वेठो हूंदो आ ईअं लगदा जन घर जो भाती वेठो आ
1: सही
0: घर जो वॾो वेठो आ एॾो कोशिश कंदो आहे पाण में ठही वञनि डिसीशन कहिड़ो बि अचे उहो असां पाण में न ठहंदासीं उन खां पोइ बि जज छा कंदा आहिनि बाबा ठही अचो
1: सही
0: तारीख़ मिली वेंदी आहे वरी तारीख़ मिलंदी आहे मां पाण पंहिंजी अखियुनि सां ऐं पंहिंजे सां पाण कंहिं फैसले में टे टे तारीख़ूं बि वरितियूं आहिनि ॿ ॿ तारीख़ूं वरितियूं आहिनि जजिस इन करे चवंदा आहिनि ठही अचो जॾहिं ॾिसंदा आहिनि सिचुएशन वर्स्ट आहे नथा ठहनि देन जजिस छा कंदा आहिनि मजबूर थी करे अनाउंसमेंट प्रोनाउंस करे छॾंदा डिसीशन बहरहाल मुंहिंजो चवण जो मक़सदु आहे छे अगरि को ॿार सपोज छोके रसूल पाक जे अगरि रहंदो हिमत में मूंसां गॾु बीठो हूंदो जी गार्डियन ईअं पालियो जे पंहिंजो उनजी प्रॉपर्टी ते या उनजी कंहिं बि शइ ते तव्हांजी नज़र
1: न हुजे
0: कंहिं यतीम खे पालण कंहिं यतीम जी परवरिश करण ऐं वक़्तु इंसान थो थी वञे इहो सदिका जारी आहे इन खां वधीक इंसान लाइ छा खपे जेको रसूल सां क़यामत वारे ॾींहुं पुले

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
3: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद बचियारी एफएम 91
4: सोलर बैटरी ते डायरेक्ट हले

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हम राही 27 मार्च से जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रच बन के मोहब्बत का सास, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम

غلام کیے بادشاہ

0: गुलाम बादशाह वरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज़।

0: DAFM Network, सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
0: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो दर्द।

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
4: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दी।
5: जाओ जी सब तैयार, ये घराना है शाहकार।

0: सास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुआ बहुत ही खबीस खातून थी।
1: प्यार परिंदा फड़फड़ करके फुर से यूं उड़ जाए, जो कहते थे वाह वाह उनको अब कहते हैं।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.3।
1: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर

दादू में 1.5 करोड़ रुपयनि जे सोन चोरी थियण वारे वाक़े जो ड्रॉप सीन, चोर फिरियादी ऐं संदसि सालो निकितो, फिरियादी दुकानदार गिरफ़्तार। SSP दादू चयो आहे त CCTV ऐं जियो फेंसिंग ज़रिए जांच दौरान सोन चोरीअ जो ड्रामो पधरो थियो। सोन चोरी करे खणी वियल दुकानदार जो सालो अरशद जोयो फरार थी वियो आहे। वधीक जांच जारी आहे, जल्द हुन खे गिरफ़्तार कयो वेंदो।

ऐं हॉलीवुड जे सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स डोम्स डे जो नओं ट्रेलर जारी। फिल्म जी नई ट्रेलर मदाहन जो तजस्स वधाए छॾियो। एवेंजर्स डोम्स डे 18 डिसंबर ते रिलीज़ थींदी।

0: 裁判所ラマベタ。
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: अभी बुधोप्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।

0: सिंध जो आवाज ॿुधंदा रहो।
1: You're listening to the Hot FM Network.

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हमराही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जे FM की आवाज,
1: जे FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

غلام کیه باشم.

0: FM Network, सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
0: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: DAFM सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
2: जरूरी तो